कान क्वास बोत क्वेसिन बजार बनक मारे कमा के जो सेवल छ ना खून धुन तो बोला पावा ने जा जबान सा श्यांग खून तो बान आना ओकली काउश ना ओकली नाले बाग ओत ना ओकली पासोक आवानां रिकिन ले खून खून कुआं खून कुतान रे रे ना क्योक ची नाले बाग क्योक ची काफलाग अरुण चा ना रख ना शे इन कौन ना खोका ना शे ली हेसुस कौन ना ना शे क्वास उत्कुईस इन हेना चेश कोने ले आल कान ना पानून रे ले ना रख ले चुकुआ ले कुआं सा चोशा Arimbi kwan ko ut na chal na chal na chal na chal na chal khun ta kal le na kulak che kura bingil chane le kaloy to kalan sa stepal sa kal aran sa klak kawa kawa Carlos Paitas manong silal kecha kwe khun ni kwal sa sanas che un ngosh kecha kawshlak chan Lina che cuando estés triste, ah, hagan así, rincón paitas.